0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001237474.org.uk।
2: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 5:30.
4: Assalamu alaikum. It's now time for the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais and Sheikh Saud Ash.

0: शायरी और जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 6:30.

0: Move for 10 आ गया है, This Girl Can का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

0: لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ لوگو،
1: اگرچہ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے عام ہے، مگر اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا لوگوں کی اپنی آمادگی پر اور اس آمادگی کے مطابق اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ لہذا پہلے انسانوں کے درمیان فرق کر کے واضح کر دیا گیا کہ کس قسم کے لوگ اس کتاب کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس قسم کے نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد اب تمام نوع انسانی کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جاتی ہے جس کی طرف بلانے کے لیے قرآن آیا ہے۔
0: تمہارے بچنے کی توقع،
1: یعنی دنیا میں غلط بینی اور غلط کاری سے اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنے کی توقع۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: If you are in any desperate situation, ask Allah. If you are in a financial crisis, ask Allah عز و جل.
4: You have to ask for help. You need help. And we go to parents and we go to friends and we go to everyone. And then no one will help. Sometimes you ask for help too much. So when you ask people too much, they even get fed up. So they don't help. When you cannot get help, what do you do? When there's no help available, then finally you turn around and say, Ya Allah. And you save him for last. True? Really, it should be in the very beginning. Everything you do and need, Bismillah. You start with the niyyah. Allah, if there is khair, make it happen. If there is no khair, then my heart will not be attached. I won't get hurt by this. It'll be up to you. I'm going to go in your path. Ask him for help. Then ask people for help. And he would put the abilities. And if you ask people too much, they get annoyed. You ask Allah too much, you get Jannah.
5: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582-725000.
6: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. The good life is achieved through the performance of good deeds.
7: Whoever wants the good life, sufficient provision, peace of mind, health, etc., should strive to do good deeds, performing them only for Allah.
8: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
9: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
10: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
12: Assalamu alaikum and welcome to another episode of Family Matters Show on Inspire FM 105.1. मैं हूं आपकी होस्ट अफशा इरफान और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट
13: हाजरा खान. वेलकम, खुश आमदे जी आयानु, भली करें आएँ, बखैर राखले, अहलन व सहलन. आप ऑफिस में हैं या घर में ड्राइव कर रहे हैं या अपना फेवरेट प्रोग्राम ट्रेन में इंजॉय कर रहे हैं, जहां भी हैं खुश रहें, कीप स्माइलिंग एंड कीप लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो चैनल इंस्पायर एफएम 105.1. गेट कनेक्टेड, कॉल अस और सेंड अस अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन आवर हॉटलाइन, दैट इज़ 07779-481-822, 01582-481-822. फॉलो आवर इंस्टा हैंडल विच इज़ इंस्पायर एफएम ल्यूटन, और लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट inspirefm.org, where you can listen to our live and previous shows and enjoy much more. Yes, Afsha, what about today?
12: अच्छा, हम पिछले कुछ एपिसोड से हमने जो किया था फैमिली मैचेस का शो हम कर रहे हैं, उसमें हम लोग फैमिली के मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, हमने कम्युनिकेशन को डिस्कस किया, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस किया जिसमें ट्रस्ट भी है, लॉयल्टी भी है, फैमिली टाइप्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कशन की. आज हम जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपकी फैमिली में दो डिफरेंट रिलीजन के लोग इन्वॉल्व हैं, आपकी मल्टी फेथ फैमिली है, उसको भी हम देखेंगे, उसमें भी हम जो आपके इश्यूज आते हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, बड़ी छोटी सी बात होती है, उससे किस किस्म के माहौल पैदा होता है, और उसको अगर हम उसको डील करते हैं तो फिर हम कैसे डील करते हैं. और ये सिर्फ मल्टी फेथ के लिए नहीं है, ये है बेसिकली एक सिंगल रिलीजन भी अगर आप करते हैं, कॉमन रिलीजन भी है आप लोगों का, तो उसमें जो इश्यूज आते हैं हम उस पर भी बात करेंगे. क्यों हाजरा?
13: बिल्कुल. मैरिज आफ्टर चिल्ड्रन, हाउ टू डील विद योर इन लॉज इफ़ यू आर लिविंग इन एन एक्सटेंडेड फैमिली, एवरी थिंग इज़ गोइंग टू बी टॉक्ड अबाउट इन दिस शो टुडे. लेकिन अफशा, आप एक चीज़ जो आप जाते जाते आप एक्साइटमेंट में थोड़ा सा स्किप कर गई, द वन थिंग दैट वी वांटेड टू टॉक अबाउट इज द फीडबैक दैट वी हैव गॉट.
12: वेरी इम्पॉर्टेंट.
13: या वेरी इम्पॉर्टेंट,
12: वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप लोगों की जब फीडबैक आती है, आप लोग जब हमें कुछ भेजते हो, सजेशन भेजते हो, कमेंट्स करते हो, लाइक डिसलाइक करते हो, तो उससे हमें ये पता चलता है कि आप हमारे प्रोग्राम में कितने इन्वॉल्व हैं,
13: आप सुन रहे हैं.
12: बिल्कुल, सुन भी रहे हैं, और दूसरी बात ये आप समझ भी रहे हैं
13: बिल्कुल
12: कि हम जो बोल रहे हैं क्या हम सही बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं ना. तो आप बताइए हमारा फीडबैक कैसा रहा?
13: बहुत, वी हैव हैड immense feedback. Mostly the people have liked the show, और सबसे मज़े की बात है, और this is something new for me, कि our program is being listened in Pakistan as well. तो इतने मज़े की बात है, अमेरिका में सुना जा रहा है, पाकिस्तान में सुना जा रहा है, और वहाँ से हमें लोग कमेंट कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं. और फीडबैक बढ़ने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब ने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया और शो को पसंद किया.
12: तैबा, बात करें कुछ फीडबैक की, क्या आप बताएंगी क्या क्या फीडबैक आई हमें?
13: एग्जैक्टली, तैबा ने हम शी प्रेज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द शो एंड सेज इट्स क्लियर टॉक एंड विद इंस्पायरिंग एंड मीनिंगफुल मैसेजेस. शी ऑल्सो सेज द होल कन्वर्सेशन इज सो रिलेटेबल. Taiba is a very regular listener. Namra Raza has listened all the way from Pakistan, and she has really liked the discussion around not judging children for their behavior. Instead, they should be actively listened. And she has mentioned the topics she wants to be discussed in the upcoming episodes: mental health in South Asian families, what parents can do when their children are stressed, and impact on younger siblings when elders leave. Such an important thing that we have never thought of.
12: And never has been discussed or touched.
13: No,
12: because usually ज़्यादातर families को लेके चलते हैं लोग. अच्छा, अम्मा अब्बा के मसले होते हैं, बच्चों के या siblings के आपस में क्या क्या तासुरात, क्या ताल्लुकात, क्या वो होती है, उसको कभी हमने कभी सोचा नहीं, कभी बात नहीं की.
13: And especially when you are the youngest of all and the elders leave, your elders
12: sibling. किसी की शादी हो गई, कोई पढ़ने चला गया, कोई नौकरी पे चला गया.
13: Exactly. And you are all alone with your parents and you don't know what to do now.
12: You have all the pressure.
13: Yeah, you have
12: आपके
13: all the
12: पास सारा वो पेरेंट्स बच्चों के जाने के बाद उनको मिस कर रहे होते हैं, उसका प्रेशर भी आपके होते हैं, ऊपर हो जाता है. अच्छा, मुझे तो जो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज लगी ना बड़ी बहन के जाने के बाद, वो था घर के काम करना. वो जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ना, खाना पकाने की या घर को मैनेज करने की, तो वो सारी की सारी फिर एक पे आ जाती है ना. हाँ, तो इसमें है. अच्छा, आप कह रही थी हमें कुछ और वो भी आई फीडबैक अमेरिका से भी आई.
13: बिल्कुल, हमें अमेरिका से सुना है नफीस अख्तर ने, और वो कह रही है वंडरफुल शो, लुक्स लाइक अ हाउस होल्ड कन्वर्सेशन, सो रिलेटेबल, इशूज आर हाईलाइटेड एंड सो मच टू टेक फ्रॉम दिस शो. सदफ हनीफ ने हमारा शो लाइक किया है ल्यूटन से, शी लाइक द नेम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो. नौरीन असमा नादिर हमें लंदन से सुन रहे हैं, फिर हमें सुमेरा एक रेगुलरली हमें वॉच कर रही हैं यूट्यूब पे, और वो कह रही हैं कि जो कम्युनिकेशन वाला हमारा एपिसोड था उसमें जो हमने बात की थी कि जजमेंटल हमें कमेंट्स नहीं पास करने चाहिए बच्चों पे, या नॉट डोंट बी जजमेंटल अबाउट योर ओन किड्स. तो शी सेज दैट पार्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट पार्ट इज़ सो ट्रू एज वेल.
12: तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शो अकॉर्डिंग टू द लिसनर्स चल रहा है.
13: अच्छा, हमें नेहा ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान से, और वो कह रही हैं कि शी हैज़ रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो, द डिस्क्रिमिनेशन अमंग चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एज इज समथिंग शी वांट्स टू बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग एपिसोड्स.
12: इंशाल्लाह
13: जब पेरेंट्स जो हैं वो अपने ही बच्चों में डिस्क्रिमिनेट करते हैं बेस्ड ऑन द एज कि ये बड़ा
12: बड़े
13: है,
12: हो
13: तो प्रेशर इसी को दे दो सारा.
12: हाँ, छोटा है उसको दे दो. हाँ. तुम बड़े हो, तुम जरा हौसला कर लो उसको. वो छोटा बहन भाई अगर आपको मार भी रहा है, पीट भी रहा है, तो आपने बोलना नहीं क्योंकि आप बड़े हैं. दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. डेफिनेटली वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस, जो बच्चों का इशू है. ठीक है, हम बड़े को बहुत बड़ा बनाते हैं, छोटे को बहुत छोटा बनाते हैं. हम इस चीज को डेफिनेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि सिर्फ एक घर का मसला नहीं है ये, मेरे ख्याल में हमारे क्या दुनिया के हर घर का यही मसला है. उसमें आप रिलीजन को भी छोड़ दें, आप उसमें मुल्कों को भी छोड़ दें, किसी भी नेशन को छोड़ दें, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है.
13: बिल्कुल, बिकॉज यू नो इट इज एविडेंट फ्रॉम द कमेंट्स के लोगों को कितना रिलेटेबल लग रहा है शो.
12: हाँ,
13: वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग फ्रॉम स्पेस, इट इज everything is around us.
12: Basically, day-to-day life ko discussion hai na. Family mein jo kuch problems ho rahe hain ya jab family jis tarah se deal kar rahi hai, wo hum log kahin se koi myth nahi hai, koi story nahi hai, koi wo nahi hai. Ye ek day-to-day life ki hum discussion kar rahe hote hain.
13: बिल्कुल. 0777-9481-822, दिस इज़ द रीज़न वी आर आस्किंग यू टू ड्रॉप इन योर मैसेजेस. वी आर सून गोइंग टू शेयर आर ईमेल एड्रेस विद यू, वेयर यू कैन ड्रॉप योर फीडबैक, योर क्वेश्चंस, योर एनी टॉपिक दैट यू वांट टू बी डिस्कस्ड इन द प्रोग्राम. सो दैट इज़ मोर देन वेलकम. And if you want to share any real life scenario that you have come across or your personal experience, that is also more than welcome. So marriage, we had done the first part, and come back to the topic that is.
12: अब ये बड़ा important है. अब हमारे यहाँ basically होता क्या है कि आप अपने घर में देख लें, मैं अपने घर में देख लूँ. शादी हुई 4-6 महीने तो बड़ा इन्जॉय किया ना, वो कपड़े पहनना, तैयार होना, सब कुछ करना. उसके बाद जब हम घर की ड्यूटीज़ में, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पड़ते हैं, तो फिर वो कहते हैं ना, हम सर झाड़ मुंह पहाड़ है ना, बिल्कुल वैसे हो जाते हैं. सुबह उठेंगे, भागते हैं किचन की तरफ कि सबको नाश्ता बनाने देना है. वो जी हस्बैंड काम पर चले गए लेकिन बाकी घर वालों को देखना है. शाम को खाना बनाना, बर्तन धोना, यानी वी आर बिजी जस्ट लाइक हाउस मैनेजिंग. ठीक है, हम घर को सेट करने में लग जाते हैं. अपने ऊपर हमारा वक्त, हमारा फोकस खत्म हो जाता है.
13: क्यों?
12: लोगों को खुश करने के चक्कर में. अपनी बेसिकली हम शादी को ये चीज लेके चलते हैं कि अगर मैंने खाना अच्छा बनाया, मैं अच्छी बहू हूँ, मैं अच्छी माँ हूँ, मैं अच्छी बीवी हूँ, और मैं अच्छी होस्ट हूँ. ठीक है, मेरा घर साफ है, मैं सुघड़ हूँ. ठीक है, और ये बेसिकली हमारे ऊपर प्रेशर क्या होता है, लोग क्या कहेंगे. ہم لوگوں نے شاید اس چیز کو بہت زیادہ اپنے اوپر لے لیا ہے کہ ہم نے سسرال میں اچھا بننا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہم سارا بوجھ اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ویسے بھی ہمارے ایشین معاشرے میں وہی بہو اچھی سمجھی جاتی ہے جو ہر چیز مینیج کرے, بشک خود کو مینیج نہ کرے.
13: آپ افشاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیوں, لیکن میرا خیال ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ کانسیپٹ بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے, اور اب جو ہے عورتوں میں تھوڑا سا بیکاز دے آر مور ٹورڈز, دے ہیو مور, دے آر کریئر اورینٹیڈ تھاٹ, تو ان کو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے گھروں کو چھوڑ دیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھے کھانے نہیں بنا رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ ان لاز کی ساتھ اچھے سے نہیں رہ رہی ہیں, دے آر ٹیکنگ ایوری تھنگ الانگ, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ کام پچھلے جنریشن کی عورتیں بھی کر سکتی تھیں, شاید ان کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی, شاید ان کو اتنا سپورٹ نہیں کیا گیا, شاید ان کو ان کا رول صرف گھر تک لمٹ کر دیا گیا تھا, جس کو اب اسٹیریو ٹائپ کو لڑکیوں نے بریک کرنا شروع کیا ہے, وچ آئی تھنک از ریئلی گڈ. آپ گھر کا کام بھی بہت اچھے سے تیار ہو کے کر سکتی ہیں. جیسے مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور کوکب خواجہ ایک
12: بالکل ان کو کون بھولے گا,
13: ان کا پروگرام آیا کرتا تھا ٹی وی پہ, اینڈ شی واز اے ونڈرفل لیڈی, ان سے میں پرسنلی بھی ملی ہوں, اور انہوں نے کہا کہ آپ بالکل تیار ہو کے کام کریں, کوئی بھی نہیں آپ کو روکتا کہ آپ اچھے سے دکھ کے اور اچھا سا تیار ہو کے آپ کچن میں کام کریں, یا اف یو آر ڈوئنگ اینی کلیننگ, اور آپ اچھے سے اپنے آپ کو سیٹ کریں, گروم کریں, بال بنائیں تھوڑا سا ہلکا سا.
12: ہاں, اگر 10 منٹ اگر آپ صبح اٹھ کے اپنے اوپر لگا لیتے ہیں, آپ ایک پراپر ایک پریزنٹیبل حالت میں آپ ہوتے ہیں اور آپ گھر کا کام کرتے ہیں, تو وہ آپ کو بھی اچھا فیل دیتا ہے, آپ کو بھی بہت فریشنس کی فیل دیتا ہے, اور آپ اچھا لگتا ہے. اور ایک 10 منٹس اگر آپ صبح اپنے اوپر لگاتے ہیں تو اٹس ناٹ اے مچ ٹائم, جلدی اٹھ جائے نا, 10 منٹ

0: हार्डकोर किस्म के अपने घर के काम करती थी, बट शी वुड जस्ट पुट हर लिपस्टिक ऑन टू लुक
1: लुक
0: फ्रेश एंड
1: फ्रेश.
0: या एग्जैक्टली.
1: हाँ,
0: तो
1: इसमें होता है. और ये कोई मुश्किल काम नहीं होता. अगर आप 10 मिनट सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हमारे घरों में आमतौर पे ख्वातीन सुबह फजर के लिए उठती हैं,
0: एग्जैक्टली.
1: और मेरे ख्याल में जितनी ख्वातीन जो सुबह फजर के लिए उठती हैं, दे हैव एक्स्ट्रा 10 मिनट्स फॉर देमसेल्फ्स.
0: या व्हाई नॉट, इट इज फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट
1: हाँ,
0: वेस्टिंग इट
1: और
0: एनीवेज.
1: याद रखें कि अपने घर में अपने लिए जरूर निकाला करें 10 मिनट. मेरी एक फ्रेंड है, और वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फैमिली में रहती थी. क्यों? मीन्स कि उसके सास ससुर के अलावा उसकी खाला सास और फूफी सास भी उसके साथ रहती थी, और उसके अलावा काफ़ी बड़ी, चूंकि उनका घर बहुत बड़ा था, तो वो मल्टीपल फैमिलीज रह रही थी. तो मुझे हमेशा कहती थी कि अफशा, मैं रात को चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं 10 मिनट अपने आप को जरूर देती हूँ.
0: विच इज़ अ मस्ट, विच इज़ अ मस्ट,
1: तो
0: क्यों
1: शी,
0: नहीं.
1: हाँ बिल्कुल, आप यकीन करें कि आज भी आप उसको देखो तो वो लगेगी नहीं कि वो इतनी बड़ी फैमिली मैनेज कर रही है. वो अभी भी फ्रेश, यंग, बड़ी यंग बाय हार्ट, तो अभी भी वो लाइफ को एंजॉय कर ली. माशाल्लाह अब तो सास भी बन गई है, बट स्टिल. तो वो, मैं उसके मुताबिक अगर वाकई सही कहती कि अगर आप 10 मिनट्स एवरी डे मॉर्निंग या इवनिंग में अपने आप को दे, तो यू आर मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस, नॉट फॉर अदर्स, आप अपने लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस कर रहे
0: अपनी
1: हो.
0: ग्रूमिंग आपको अपने साथ अगर 10 मिनट स्पेंड करने के लिए मिलेंगे, तो आप अपनी कल के गुजरे हुए को या आने वाले दिन को प्लान कर सकते हैं, आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. और सारी सोचें, क्लीनिंग एंड कुकिंग एंड डिशेस की सारी सोचें छोड़ के, यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ कि हाउ डू आई डिवेलप माई सेल्फ सेल्फ पर्सनली, ठीक है. कोई कोई हॉबी जो आप कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा सोच लें. एनीथिंग दैट कुड बी एनीथिंग, दैट 10-15 मिनट्स कुड बी एनीथिंग. या एंड इट
1: एनीथिंग
0: गोज़ फॉर एवरी वन. लाइक
1: एवरीवन.
0: इफ यू इफ द वी हैव आर मेल लिसनर्स, दिस अप्लाइज टू देम एज वेल. कोई भी, एवरी वन आउट देयर.
1: दूसरी बात ये कि कोशिश किया करें कि अगर 10 मिनट आप अपने लिए निकालती हैं, तो एक 5 मिनट आप अपने स्पाउस के साथ जरूर बैठा करें. अपना मी टाइम आप लोग जरूर रखें. शादी, मानते हैं, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और बच्चों के साथ तो जरूर बढ़ जाती हैं. इधर हम, आपको ने भी अंदाज़ा किया कि आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं. जैसे ही हम खाना लेके बैठते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ याद आ जाता है. मेरे बेटे को रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम था. जैसे ही हम खाना खाने बैठते थे, वो हमेशा वॉमिट कर देता था. और पता नहीं उसका टाइम क्यों फिक्स था कि जैसे हम खाना खाने बैठते थे तो ही विल स्टार्ट.
0: या मे
1: ठीक,
0: बी
1: वो,
0: बिकॉज़ ऑफ द स्मेल ऑफ द
1: हाँ, वो
0: फूड और
1: स्मेल
0: फिश
1: और वो
0: फ्राइज.
1: सब होता था. लेकिन चाहे कुछ भी हो, आप लोगों के लिए हमारा यही एडवाइस है कि आप लोग चाहे कुछ भी हालात हो, खाना इकट्ठे बैठ के खाएं. वो आप लोगों का, हस्बैंड एंड वाइफ का मी टाइम होता है, और ज़रूर दें. अगर आप एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हैं, तो रात का कावा आप दोनों इकट्ठे बैठ के पी लें. क्योंकि होता है ना हमारे यहाँ कि वो रात का खाना है तो सारा खानदान इकट्ठा बैठ के
0: बिल्कुल.
1: पीता खाता है, तो उसमें आप सिर्फ अपने लिए एक टाइम निकालना मुश्किल होता है. तो बेहतर है कि आप जब अपने कमरे में जाएँ या थोड़ी देर के लिए अलग बैठ जाएँ, या कावा पी लें साथ
0: आप
1: बैठ के,
0: लॉन में
1: ना
0: बैठ जाएं, लाउंज में बैठ जाएं,
1: कमरे में
0: कब
1: बैठ के बातचीत कर लें, कावा इकट्ठा पी लें. फूड, ऑलवेज रिमेंबर,
0: ब्रिंग्स
1: फूड ब्रिंग्स द पीपल
0: पीपल
1: टुगेदर.
0: टुगेदर. या दिस इज सो ट्रू. तो लास्ट टाइम हमने आपके, वी लेफ्ट सम फूड फॉर थॉट एज वेल, हाउ वेल डू यू नो योर पार्टनर. तो वी होप दैट यू हैव दैट होल 1 week टू थिंक ओवर इट. सो लेट अस कंटिन्यू विद आर टॉपिक एंड टेक इट फॉरवर्ड. डिसएग्रीमेंट्स,
1: वो तो हर घर
0: यू
1: में
0: विल
1: होती है.
0: नॉट ऑलवेज अग्री.
1: देखिए, दो बर्तन भी साथ रहे तो खड़कते हैं. हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है. आपका डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है. अब आप, हम छोटी सी बात करते हैं, आपको येलो कलर पसंद होगा, मुझे नहीं है पसंद, ठीक है? तो इस पे हमारा डिसएग्रीमेंट हो सकता है.
0: या
1: पॉइंट
0: ओके.
1: है, डिसएग्रीमेंट को सॉल्व कैसे करते हैं.
0: और जब डिसएग्रीमेंट में हमें 2015 की बातें याद आ जाती हैं तब.
1: तो क्यों याद आती हैं? ठीक है, आप याद आती हैं. देखें, हर बंदा पास्ट को लेके चलता है. जो लोग पास्ट को भूल जाते हैं, उनकी या तो मेमोरी बहुत अच्छी होती है या वो सुपर होते हैं. क्योंकि मुझे तो जिस वक्त कोई जरा सा दिल खफा होता है, मुझे दुनिया जहान की क्या पिछले जन्म की बातें भी याद आती हैं कि ये हुआ था. इट्स फैक्ट.
0: बट डोंट ब्रिंग देम टू द सर्फेस
1: हाँ,
0: एट
1: देखिए,
0: दैट एग्जैक्ट मोमेंट.
1: हाँ, आप जब्त करना, सब्र करना, بہت مشکل کام ہے. اسی لیے صبر کا اجر بھی بہت لکھا ہوا ہے.

0: हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम इंसान हैं, फरिश्ते तो है नहीं, जब गुस्सा आता है, जब डिसएग्रीमेंट होती है, तो हम पुरानी बातें भी लेके बैठ जाते हैं। तुमने तब ये कहा था, उस वक्त तुमने ये किया था। पॉइंट ये है कि जब आग लगी हुई होती है तो उसके ऊपर पानी डालते हैं, मजीद तेल नहीं डालते।
1: ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप सब सब्र की बात कर रही हैं, क्या आपका ये मतलब है कि आप यू हैव अ क्लियर पॉइंट इन योर माइंड एंड यू वांट टू यू का यू डोंट वांट टू आर्ग्यू, यू जस्ट वांट टू डिस्कस, ओके, एंड यू जस्ट डोंट से एनीथिंग बिकॉज यू आर डूइंग सब्र,
0: नहीं
1: इज
0: नहीं
1: दैट द
0: नहीं
1: डेफिनेशन?
0: देखिए, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं डिस्कशन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है, ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि गुस्से में करने की बजाय, जज्बाती होके करने की बजाय, आप उसको ठंडे दिमाग से अच्छे माहौल में करें। होता है ना, मियाँ बीवी बैठ के बात कर रहे होते हैं, अच्छी भली बात है, बीवी ने एकदम से शिकायत की या मियाँ ने एकदम से शिकायत की, झगड़ा बन जाता है, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, जिस तरह हमने पिछली दफा बात की थी कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं पलटती,
1: बिल्कुल.
0: तो अगर आपको शिकायत है आप उसको डिस्कस करें, लेकिन आप उसको डिस्कस भी तरीके से करें,
1: हाउ टू
0: रिस्पेक्ट के साथ,
1: या हाउ टू डिसएग्री सेफली एंड
0: सेफली,
1: रिस्पेक्टफुली.
0: रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करें। हर बंदा डिसएग्री करता है, हर कोई दूसरे से मुख्तलिफ होता है, जरूरी नहीं कि सबका एक ही हो।
1: एंड डू इट रिस्पेक्टफुली,
0: रिस्पेक्टफुली,
1: डू इट सेफली विदाउट गेटिंग एंग्री, विदाउट बीइंग
0: लाउड,
1: अब्यूसिव, विदाउट बिकमिंग लाउड, ओके, बिकॉज यू आर मेकिंग एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो इफ दे आर लिविंग विद यू, एंड ऑल्सो इफ ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट इफ यू नीड सम स्पेस, जस्ट आस्क योर स्पाउस टू गिव यू सम स्पेस फॉर
0: हाँ।
1: 20 मिनट्स, 30 मिनट्स.
0: अच्छा, एक बड़े मजे की बात बताऊं, उस दिन मैंने एक एक आर्टिकल पढ़ी थी, तो वो कहते हैं कि आपकी जो वॉइस होती है, जो इसकी टोन होती है ना, जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, मैं तुमसे अगर ये बात कहूँ कि हाजरा कल तुम मेरे घर आई थी, तुम पानी की बोतल क्यों लाई थी, ठीक है, द वे ऑफ सेइंग इट, मैं ये बात कहूँ हाजरा तुम कल क्यों आई थी मेरे घर पानी की बोतल लेके, दैट्स अग्रेसिव, राइट। लेकिन अगर वही बात मैं तरीके से करूँ कि यार तुम कल आई थी तो तुम क्या पानी की बोतल गलती से साथ ले आई थी, या समथिंग लाइक दैट, दैट इट डज नॉट ऑफेंड यू, बट आई एम गिविंग यू माई पॉइंट।
1: सो योर टोन इज मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस.
0: यस, तो उस दिन जब मैं वो पढ़ रही थी तो उसमें कहा था कि सॉफ्ट टोन, लाइटर टोन, लो वॉइस मेक्स मच मोर इम्पैक्ट देन येलिंग एंड शाउटिंग।
1: एग्जैक्टली, इट डज, क्योंकि येलिंग एंड शाउटिंग में आप जो है ना, एक या तो द पर्सन नेक्स्ट टू यू, उसको आप या तो ऑफेंसिव कर रहे हैं या फिर उसको आप डिफेंसिव मोड में भेज रहे हैं,
0: एग्जैक्टली,
1: एंड बोथ आर रॉन्ग.
0: बोथ आर रॉन्ग ना। तो जो हम कह रहे थे ना एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की हम बात कर रहे थे, तो ठीक है, हर घर में डिसएग्रीमेंट होती है, हर मियाँ बीवी में, बहन भाइयों में, माँ बाप में, बच्चों में, अब पेरेंट्स और बच्चों की भी आप लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है, बच्चे हैं तो उनको सिखाना है कि वो बड़ों से किस तरीके से बात करें, किस टोन में बात करें, किस तरह से मतलब सुलझे हुए तरीके से बात करें। हस्बैंड एंड वाइफ, जब देखिए हम सिर्फ पेरेंट बन नहीं जाते, बच्चे पैदा नहीं कर लेते, हमने उनके सामने अपनी मिसाल रखनी होती है।
1: दैट इज मोर डिफिकल्ट,
0: हाँ,
1: दैट इज मोर डिफिकल्ट,
0: दैट्स वेरी डिफिकल्ट,
1: यस.
0: क्योंकि देखिए हम बाज़ औक़ात ये होता है कि हम हाइपर हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा हमें देख रहा है। अब जो बच्चा देख रहा है डेफिनेटली वो कॉपी करेगा। हमारे
1: बिल्कुल.
0: डिसएग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें ये भी होता है कि अगर एक बंदा हाइपर हो रहा है तो दूसरा खामोश हो जाए, ठीक है, दूसरा वो जगह छोड़ दे, उस
1: बिल्कुल.
0: कमरे से निकल जाए,
1: बाय सम टाइम फ्रॉम योर पार्टनर,
0: बिल्कुल
1: और उनसे कहें कि मैं विल मीट आफ्टर लाइक 20 मिनट्स, थर्टी
0: बिल्कुल
1: मिनट्स काम योर सेल्फ सेल्फ डाउन. डिस्ट्रक्टिव पैटर्न सच एज क्रिटिसिज्म, कॉन्टेम्प्ट, डिफेंसिवनेस एंड स्टोन वॉलिंग एज पर्टिकुलरली दे आर पर्टिकुलरली डैमेजिंग. सो परहैप्स द गोल शुडन बी हाउ डू वी विन द आर्ग्यूमेंट, इट शुड बी हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट डैमेजिंग द रिलेशनशिप. सो इट शुडन बी हु विन्स द आर्ग्यूमेंट, ठीक है. उसमें आर्ग्यूमेंट विन करने के चक्कर में आप दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी स्टेप ऑन करेंगे, आप लाउड भी होंगे, यू आर मेकिंग अ बैड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन एंड अदर फैमिली मेम्बर्स एज वेल. तो उसमें विन करके भी लूज ही हैं, ठीक है. तो फाइंड आउट अ वे हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट डैमेजिंग द रिलेशनशिप, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. 07779481822. Drop your feedback kindly. The in-laws, we did touch it last time, but we do want to live. Sometimes we do want that extra support, extra, especially when the newly married couple is around. And they are in a family way where they need their elders to be around, you know, to guide them how to take care of the child and some support during the early days. They do want people to be around, but it can be a little bit problematic when they don't know their boundaries.
0: Actually, hota kya hai? Hamara ek setup hai. Bahu aati hai, to log expect karte hain ki ye jis din ghar mein paon rakhe na. ठीक है, उसी दिन ये हमारे घर के सब समझ जाए. ठीक है, वो उसी तरह से चले जैसे हम चल रहे हैं, वो करे जो हम कर रहे हैं, वो बगैर उसको बताए वो उसको सुपर ह्यूमन समझते हैं कि वो आते के साथ उसको सब कुछ आता होगा. मेरे ख्याल में यहाँ पर इन लॉस की ड्यूटी डबल हो जाती है. और सास ससुर कह लें आप, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, देवर, सिस्टर इन लॉ, दे नीड टू गिव the new person some space. Space, time. उसको सीखने का, समझने का वक्त दें. जब अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके बच्चे का घर आबाद रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा खुश रहे, आपका बेटा खुश रहे अपनी बीवी के साथ, या उसकी, अगर आप अपने बच्चे की जिंदगी सुखी करना चाहते हैं ना, तो रश करने की बजाय थोड़ा सा उनको स्पेस दें. इतना स्पेस दें कि वो आपके घर का माहौल समझ सके.
1: और जैसे इफ़ यू वांट द गर्ल टू अंडरस्टैंड योर फैमिली, उस तरह आप उसको भी अंडरस्टैंड करें कि व्हाट आर हर लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड थिंग्स, द लिस्ट इज.
0: हाँ, ये दोनों तरफ से चलता है.
1: सो क्योंकि दिस इज द आइडियल सिचुएशन, बिकॉज द सिबलिंग्स आर सपोर्टिंग ईच अदर, फैमिली सेलिब्रेट टुगेदर, चिल्ड्रन ग्रो अप सराउंडेड बाय रिलेटिव्स. सो दिस इज सो ब्यूटीफुल, बिकॉज चिल्ड्रन ग्रो अप सोशलाइजिंग विद देयर कजन्स एंड you know, elder family members, which is always good.
0: कहते हैं ना कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत मिलेगी नहीं.
1: Support shouldn't become interference.
0: बिल्कुल. मतलब इतना ज्यादा आप वो ना करें, गाइड, मतलब गाइड करें लेकिन इतना भी ना करें कि अगले बंदे की जिंदगी जहन्नुम हो जाए. ठीक है, कि बस हर वक्त आप उसको रोक टोक ही करते रहें.
1: इट शुड बी ऑन कपल्स डिस्क्रेशन के हाउ दे आर गोइंग टू स्पेंड देयर मनी, हु डिसाइड्स लाइक हाउ टू डिसिप्लिन द चिल्ड्रन, हु डिसाइड्स वेयर द कपल लिव्स, हु हैज एक्सेस टू देयर प्राइवेट मैरिटल कन्वर्सेशन. क्योंकि हमने स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, इन कंट्रीज में हमने ये भी एक चीज़ देखी है कि द मैरिटल कन्वर्सेशन दे गो आउट ऑफ द बेडरूम एंड दे सर्कुलेट, दे स्टार्ट सर्कुलेटिंग अराउंड द फैमिलीज.
0: बहुत सारी चीज़ें अगर आप अपने कमरे के अंदर अपने उसमें करें, प्राइवेट उसमें करें, ज़्यादा बेहतर है. देखिए, एक हम लोगों का ना बदकिस्मती से एक वो है कि जो मतलब सासें कहती हैं कि जो हमने भुगता वो हमारी बहुएं भी भुगतेंगी.
1: विच कांट हैपन बिकॉज टाइम्स चेंज. Stay with us, 07779481822. We are going to come back after a very short break and discuss what the cultural perspectives are. Thank you so much for staying with us.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
4: Trust yourself to know what's true, to find your way in the darkness. Let the word inspire you, don't live your life in blindness. All this created not by chance, but a solemn testimony. Find the importance of this life, and upon the path stay steady. Trust yourself to know what's true, don't follow the absurd. Let the truth inspire you, for ignorance can be cured.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.

0: ये ग्रुप्स विद इन अ ग्रुप कभी भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए म्यूटनी करने वाले को किताब के अंदर बताया गया है कि उसकी उसको आपने माफ़ नहीं करना, सख्त तरीन सज़ा होती है, क्योंकि इस तरह फिर और लोगों में भी ये चीज़ें पैदा होती हैं। लेकिन आप इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं कि उसमें कम से कम म्यूटनी और ग्रुप्स और आपस में ये मामला पैदा हों, और इस किस्म के जो भी बंदा या इस किस्म के मामला जो आपकी फ़िलासफ़ी से अलाइन नहीं है, उनको शुरू में आपने बाहर निकाल के साइड पर रखना होता है, चाहे जितना मर्ज़ी नुकसान हो जाए। क्योंकि नुकसान सिर्फ एक होगा, अगर आप फ़िलासफ़ी से हट गए, मिशन स्टेटमेंट से आप अपनी हट गए, और जो आगे आपने देखा हुआ था उस मकसद से अगर आप हट जाते हैं, किसी भी की मोहब्बत में, किसी के फेवरेटिज्म में, या किसी की ज़रूरत के तहत, तो आगे जाके फिर नुकसान हो जाएगा आपको। तो इसीलिए मकसद किसी भी चीज़ का प्राइम इम्पोर्टेंस का होता है। रिश्ते की सोल, जो भी आपका रिश्ता है, उसकी सोल से आप जब तक हट जाएंगे, तो कि जितनी मर्ज़ी मोहब्बतें, इज्जतें और कहानियाँ आप लेके आएँ, जब तक वो सोल मिसिंग है, इंसान की बॉडी में जो कुछ हैं केमिकल्स, एलिमेंट्स, मिनरल्स, जो कुछ भी आप सब का सब भी ले आएँ, सारा कुछ एक जगह जमा भी कर दें, जितनी मर्जी साइंस लड़ा लें, रूह आप नहीं फूंक पाएंगे उसके अंदर। तो रूह जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रूह चाहे इबादत की हो, रूह चाहे रिश्ते की हो, रूह चाहे मोहब्बत के अंदर हो, रूह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्पिरिट में हो, हर चीज़ रूह पे खड़ी है। और बाकी सब का सब जो है उसको साथ लेकर चलना और उसको प्लान करके उसको रूह स्पिरिट ऑफ द मिशन के साथ चलना होता है, वरना कोई भी चीज़ एंड तक नहीं पहुँच पाती।
1: सही, बिल्कुल। पॉजिटिविटी और
0: मेरे साथ रहेंगी, मेरे साथ रहेंगी। आपका दूसरा कॉल होल्ड कीजिएगा। हमारे साथ जनाब एक मेहरबान हैं, उनको भी हम लेते हैं, बड़ी दूर से हैं, उनको भी ऑन एयर लेते हैं हमारे साथ। रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर।
2: आजाद जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी।
0: सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो?
2: बिल्कुल बढ़िया सर जी।
0: तुहानू बोर ते नहीं कीता पिछली कन्वर्सेशन दी समझ आ रही सी?
2: आ रही सी सर, लाइक और धीरे धीरे ये चीजें मैं रिलेट भी कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ अपने साथ, बिकॉज अब मैंने महसूस किया है कि अंटिल अनलेस आई मीन टू डू समथिंग आई शुडंट डू इट, एंड नाउ आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स बाय एक्चुअली लाइक अभी मुझे लगता है कि मुझे ये चीजें करनी चाहिए, मुझे महसूस हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी भी लग रही है। पहले मैं सिर्फ कर रहा था, उसमें ये डिफरेंस आ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था, आई वॉज गेटिंग कंफ्यूज and I was wasting too much time thinking about things, and in reality wo mere headspace mein aise mujhe confuse kar rahi thi ki jaise they actually exist but they don't exist, if you know what I'm trying to say.
0: Yeah, uske liye aapka na simple tarika hai jo ki aapko karna hai, jab bhi aap kisi cheez ke bare mein sochte hain aur ek soch में एक ऐसा लेवल आ जाता है जहां सोच गोल दायरे में घूमना शुरू हो जाती है, या उस सोच के गुंजल बनने शुरू हो जाते हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट होना शुरू हो जाते हैं, आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, या आपको लगता है कि मैं फंस गया हूं, मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा। तो उसी के लिए बोल क्लब आज़ाद है तेरे को आपने यूज़ करना है। बहुत सारे लोग जिनको मैं कहता हूँ, आप जिस सफ़र में हैं, अगर ये सफ़र नया है तो रास्ते में आप मैप देखते हैं, रास्ते में आप गूगल करते हैं, ये तमाम चीज़ें इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी डायरेक्शन को सेट करने के लिए होती हैं, बजाय इसके कि आप परेशान हो जाएं। आपने जैसे गूगल मैप्स निकाल के रास्ता ले लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी में भी जब आप कुछ सोचने लगते हैं, जब आप सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पर होते हैं, इसमें कुछ चीज़ें नई होंगी, कुछ पुरानी होंगी, कुछ चीज़ों को शुरू में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, कुछ एंगल्स मिसिंग हो जाते हैं, तो उसमें जैसे आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे बिल्कुल आपने अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको उठाना है और उसको शो में लेके आना है, और उस शो में हम वो गुंजल भी खोलने की आपके साथ कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोग जो ये सब सोचते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके उसमें से बाहर निकलना है आपने, तो ये आपने करना है। तो जो भी गुंजल बनेगा, जहाँ पर भी कोई परेशानी होगी, जहाँ पर भी लगेगा कि आगे कोई रास्ता नहीं है, वहाँ से ही एक्चुअल में रास्ते मिलते हैं। सिर्फ उसको देखने का एक तरीका होता है, और उसको जब आप मकसद से अलाइन करते हैं, रिजल्ट्स को सामने लेके आते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल वहाँ पे जहाँ एक दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा होता, वहाँ 10 दरवाजे खुले होते हैं, उनमें से आपने एक लेना होता है, और उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो फिगर आउट करना होता है इसकी क्या पैकेज डील है, फिर आप वो रास्ता लेते हैं। उसमें आप कम्फर्ट भी आपको मिलती है, और उसके जो चैलेंजेस होते हैं उसका भी आपको पता होता है कि मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक हो गया?
2: और मैंने इस दौरान मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी है कि जब मैं ऐसे गुंजलदार सोचों में फंस जाता हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द थॉट्स आई गेट दे आर नेगेटिव। सो अभी मैंने अपने आप को और पहले मैं उसके बारे में सैड हो जाता था, लाइक ये सोच सोच के, बट नाउ आई स्टॉप डूइंग दैट।
0: अच्छा आपने काम अभी आपने काम

0: करना है, ये जब आप सोचते सोचते एक जगह पे पहुंचे जहां आपको लगे कि सोचों के गुंजल बन रहे हैं या एक विशेष साइकिल में आप फंस गए हैं, तो और आपकी जो भी थॉट्स उसके बाद आपने कहा है जो इनिशिएट करती हैं या आपको घेर लेती हैं, वो थॉट्स हैं जो नेगेटिव हैं, तो आपने समझना है वो जानबूझ कर नहीं आ रही हैं। एक तो जो कुछ आप पिछले 25-30 साल से सोचते रहे हैं, करते रहे हैं, आपके जहन का हिस्सा बन गया, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपके साथ हुआ, जो इर्द गिर्द हो रहा था, इन तमाम चीज़ों का मिला जुला जो रुझान है वो पहले से आपके ब्रेन में स्टोर्ड है, वो आपकी एक हद तक सोचने की पर्सनैलिटी बन जाता है। एक दूसरा, क्योंकि आप एक रास्ते पर जा रहे होते हैं तो उस वक्त जब आपको नहीं पता होता तो आप थक जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो जब भी आप वीक होंगे ना तो जो भी आपको थॉट मिलेगी वो भी कमजोर होगी। थका हुआ बंदा, एग्जॉस्टेड जो आदमी होता है ना, उसके पास और एनर्जी आगे बढ़ने के लिए या मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए वो ख़त्म हो जाती है, तो जो वीक सी एनर्जी बचती है ना उसके मुताबिक ही फिर आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये कसूर जो है आपका या किसी का भी नहीं है कि उसको जब वो सोचने के गुंजल बनते हैं तो वो उसमें से जो थॉट्स, इसीलिए आपने देखा होगा वीक लोग क्या करते हैं, स्ट्रांग बंदा जब लड़ाई करता है वो डिफरेंटली लड़ाई करता है, वो अगर वो जिस्मानी तौर पे लड़ाई करता है तो उस तरह करता है, अगर जबानी तौर पे वो लड़ाई कर रहा होता है किसी बंदे से, अपना आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, तो वो बड़ा सांस पे उसका काबू होता है, वो आर्ग्यूमेंट दे रहा होता है, उसको सांस नहीं चढ़ जाते या वो गुस्से से पागल नहीं हो जाता। गुस्से से किसी चीज़ में भी पागल होने की एक निशानी ये है कि आप वीकर फुटिंग पे हैं, और वीकर फुटिंग के मतलब नहीं कि आप का आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं है, उसका ये मतलब है कि अब आपको ये पता है कि ये बात 100 दफ़ा पहले हो चुकी है और इस बंदे को समझ नहीं आई, अब आपको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आपको पहले से पता होता है कि इसका आउटकम क्या आना है, फिर मैं यहाँ मगज़ मारूंगा, जान अपनी जो है वो जोखिम में डाल के गुस्सा करूंगा, एनर्जी वेस्ट करूंगा अपनी, और फिर कुछ दिनों के बाद वही मामला होगा जो पहले था। तो ये आपने समझना है कि जब भी वहाँ पर आपको लगे कि आप एक हद, ये बिल्कुल एक्सरसाइज की तरह है, जब मैं जिम जाता हूँ ना, स्विमिंग करता हूँ, जब मुझे कभी कभी आप बहुत अच्छी एनर्जी में होते हैं, आप 50 लेंथ से उससे आगे कर लेते हैं, कभी कभी शुरू से आप यकीन करें, अगर सच में आपको बताऊँ ना, ये मैं एक शो करूँगा जिसमें मैंने आपसे कहा था आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, आपने मुझे बताना है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं उसमें से उसी काम के अंदर से आपको पूरी ज़िंदगी के सबक जो है ना, जो लेसन्स हैं जो उस काम से सीख सकते हैं। कोई लेडी कहती है जी मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, हाउसवाइफ होने में आप क्या क्या सीख सकते हैं जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको लगेगा पूरी दुनिया में सब कुछ आप सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। कोई बंदा कहेगा मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं उसको स्पोर्ट्स से वो सब सिखा दूंगा जो पूरी ज़िंदगी में आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके रिजल्ट आ जाएंगे। कोई बंदा कहे मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, मैं उसमें से आपको बता दूँ, आप कुछ भी बताएं कि मैं ये काम करता हूँ जिसकी सिग्निफिकेंटली आपके ख्याल से कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हर चीज़ की वैल्यू है, सिर्फ हम उन्हें वो जो सीखा है जो हम रोज़ कर रहे हैं। अगर आप कारपेट क्लीनर भी हैं ना, तो आप जो रोज़ कर रहे हैं या दुकान में कहीं काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं किसी गैस स्टेशन पे, वो भी मुझे आप बताएं तो मैं आपको उससे बताऊंगा कि उसको कैसे आप अपनी पूरी ज़िंदगी साफ़ कर सकते हैं, रिश्ते साफ कर सकते हैं, सोचें साफ़ कर सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है, और ये उसी चीज़ से सीखा जा सकता है जो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस थॉट को छोड़ के आगे चलना चाहूँगा, इस बात को कि इससे अगर रिलेटेड आगे कुछ पॉइंट्स हैं तो आप ज़रूर बात कर सकते हैं हीरा सिंह जी।
1: हाँ जी सर, मैंने ना अभी
0: आपको समझे कि वो थॉट्स कहाँ से आती हैं, वो क्यों exactly. हो जाती हैं, वो क्यों नेगेटिव हो जाती हैं, और उस वक्त आपको, हाँ ये बात जो मैं आपसे अगली करना चाह रहा था कि जब भी आपको लगे कि आप सोचने की कोशिश करते हैं आप फंस जाते हैं, आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप एंग्शियस हो जाते हैं, तो और या फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं या इरिटेबल हो जाते हैं आप, तो आपने उस बात को वहीं पर रोक देना है, या वहां से आपने अपना कोई भी फेवरेट काम है जो आप करते हैं, मूवीज अच्छी लगती हैं तो मूवी देखें, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इससे बेहतर और कोई चीज नहीं है, आपने उस थॉट को वहीं पे रोकना है कि आई विल गेट टू यू वंस आई एम डन विद ऑल दीज थिंग्स। तो जब आप कोई, या आपने किसी दोस्त से मिलना है या जहां से आपको बेहतर एनर्जी मिलती है, बच्चों से, बड़ों से, दोस्त से, कहीं से भी आपने करके वो एनर्जी इकट्ठी की, आपने अपना काम किया और दोबारा उस थॉट को आपने टैकल करने की कोशिश की, तो ये समझना जरूरी है जब मैं थक जाता हूँ किसी चीज़ को करते करते तो मैं उस चीज़ को छोड़ देता हूँ। ये मैंने सीखा था एक ज़माने में जब मैं पूल खेला करता था और बहुत दिल के साथ मैं अपना गेम, मैंने पूल और ये जो दूसरी स्नूकर ये एक ज़माने में शुरू की थी, FSC के ज़माने की बात है, तो खेलते खेलते वो मैं अच्छे होते होते तमाम जो चैम्पियंस थे उन सबको हमने हरा दिया। एक ऐसा बंदा रह गया था जिसको हराना बहुत मुश्किल था, वो बहुत सोच समझ कर, बहुत टाइम लेकर, इतने कैलकुलेटेड शॉट करके थका देता था आदमी को कि वो जो आपका जो एड्रेनलिन रश होता था ना वो ख़त्म हो जाता था। तो उस बंदे को बहुत सोच समझ कर मैं ऑब्जर्व करता रहा कि कोई उसको नहीं हरा पाता था, हमेशा वो जीत जाता था। तो मैंने सोचा इसको कैसे हराएं, तो और उसके बाद मैंने कुछ दिन के लिए गेम छोड़ दी, क्योंकि मैं जो शॉट्स वगैरह खेलने लगता था ना, मैं इरिटेट हो रहा था। तो वो शॉट्स जिस तरह एक्यूरेसी से जाती थी वो जा नहीं रही थी, मेरे आइडियाज़ गलत हो रहे थे। तो बहुत ज़्यादा जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं या बहुत ज़्यादा वो चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो आप डिसकनेक्ट करना होता है, ताकि कुछ एंगल्स हैं जो आप मिस कर रहे हैं। फिर जब मैं पीछे होके बैठा, तो मैं सिर्फ आकर क्लब में उसकी गेम देखा करता था। 2 हफ्ते इस तरह हुआ, फिर मैंने जाकर एक आध दिन थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस की। मैंने उनसे कहा जी चले खेलें, क्योंकि उस वक्त हमारे पास पैसे बड़े कम होते थे, और जो बंदा गेम जीतता था ना, पैसे उसको नहीं देने पड़ते थे। हर गेम के आई थिंक 5 रुपये होते थे, और वो वही देता था जो हारता था। तो वो तो सारा दिन खेलता रहता था, और हम जो थोड़ी देर में हार के चले जाते थे जब भी उससे। तो उसमें क्या था कि फिर मैंने कहा चले जी खेलते हैं, और आप यकीन करें मैंने उसको फर्स्ट गेम में ही हराया। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद दोबारा खेला मैं, फिर मैंने उसको हराया, फिर उसने भी हराया, फिर हमने भी हराया, जैसे भी था। लेकिन वो जब बैरियर टूट गया, फिर उसको हराने का कोई इशू नहीं होता था, मुझे पता होता था आज मैं जीतूंगा, और उसी उसी तरह से खेलना था। तो डिसएंगेज करना, जैसे रब कहता है कि जब आपको या आपके रब को जब इस तरह की उल्टी सीधी जब बातें करते हैं लोग, वो हिजान में या जज्बात में होते हैं, तो वहाँ उनको कन्फ्रंट करने के बजाय रिट्रीट करें, आप डिसएंगेज करें, और फिर किसी सही मौके पर मुनासिबत के साथ आप उनके साथ एंगेज करें।
2: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर। आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए, और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
4: فتوكل على الحي الذي لا يموت. As Allah says, depend on Allah. Depend on Allah, the one that lives and never dies.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists. Your first choice for accident claims. The Specialist Claims Company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. Respect for the scholars.
8: Muhammad ibn Amr related from Abi Salama that Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, stood to hold the saddle of Zayd ibn Thabit, his teacher. Ibn Thabit said, O cousin of the Messenger of Allah, move away. Ibn Abbas replied, This is how we treat our scholars and noble ones.
9: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favorites, Then order for delivery or collection from Gow Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gow, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gow Express on Facebook.
10: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
11: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
3: आपने थॉट्स के साथ भी ऐसे ही करना होता है, रिश्तों के साथ भी ऐसे ही करना होता है, बिजनेस में भी ऐसे ही करना होता है. मैं पीछे हट जाता हूँ और उस वक्त मैं कोई भी वॉइस नोट रिकॉर्ड करने से, कोई भी बात करने से, कोई भी चीज़, क्योंकि अब जजमेंट क्लाउडेड हो गई है, अब मैं उसको उस तरह डील नहीं कर पाऊंगा, तो पीछे हट जाएं. तो जितने भी मेरे दोस्त मेहरबान लोग होते हैं, मैं उन्हें हमेशा कहता हूं, जब सोच के गुंजल बनने लगे या आप गोल गोल घूमने लगे या आपको लगता है कि अब मैं थक गया हूं या गलत मुझसे काम हो जाएगा, तो दो तीन चीज़ ना किया करें. एक तो फैसला कोई ना किया करें, दूसरा मुंह से अल्फाज निकालने से पहले, कोई ईमेल सेंड करने से पहले, कोई वॉइस नोट करने से पहले, किसी चीज़ पे साइन करने से पहले, किसी अपने दोस्त को जिनसे आप इज़्ज़त प्यार करते हैं, जिनके आपकी ज़िंदगी में बड़ी वैल्यू है, उनको कॉल बिल्कुल मत करें. उनकी किसी बात पे इरिटेटेड ना, फिर भी आप उनको तंग ना करें. पीछे हट कर टाइम दें. आपको लगेगा ये जैसे ही इम्पल्स उतर जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपका गुस्सा, आपकी तकलीफ, परेशानी, इरिटेशन बैठ जाएगी, आपका पर्सपेक्टिव ज़्यादा क्लियर होगा. फिर जब आप इस चीज़ को एंगेज करेंगे तो टोटल डिफरेंट एनर्जी के साथ करेंगे आप. ठीक है हीरा सिंह जी?
4: अक्सर कहते हैं ना, अगर आपके किसी को कोई प्रॉब्लम है और आपने उसको फिक्स कर लिया है, और यू शुड कम ऑन द एयर एंड टेल द अदर लिसनर्स हाउ यू डिड इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई डिड इट. नाउ आई टैकल माय प्रॉब्लम्स, आई डोंट टैकल देम ऑन द स्पॉट. I step back and give myself something productive to do, something I'm good at. Mm-hmm. Like I'm good at making coffees, I'm good at make cooking. Main kuch bhi apne aap ko kuch alag task deke, then I get back into it and I see the results. Aap itne acche aur itne badhiya faisle lete ho aur sukoon ke sath you can sit back that you've taken this decision for yourself and your family and anyone around you. Bahut acha mehsoos hota hai aur andar se jo mostly hamari jo problem hai khas karke deshon ki, we focus on what we are missing, jo hamari zindagi mein lack hai na, hum us pe concentrate kar rahe. Exactly. And it gives me so much new perspective, so much, and bahut abundance of energy to focus on other things.
3: aapko main bata hu, jab main bahut zyada kisi cheez pe koshish, abhi main ek do kaam karne ki koshish kar raha hu 3-4 saal se, to wo build up ho raha hai pressure, kyunki creative kaam hai, likhne ka kaam hai, film ka kaam hai, stage plays ka kaam hai, ab wo ho nahi raha 3-4 saal se, aur wo covid ke baad se sab kuch hi ulat gaya hai. Even you know sleep cycle se leke bahut sare jo kaam the, और फिर उसको ग्रिप करने के लिए मुझे साल एक लग गया उन तमाम चीज़ों के ऊपर. तो मैं जब भी, या मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिस पर मुझे लगता है अब ये काम हो जाएगा और वो काम नहीं होता, तो एक आध मिनट या एक आध घंटा या कभी कभी एक आध दिन लग जाता है उसमें से बाहर निकलते हुए. लेकिन उसमें निकलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, अच्छी सी चाय पीते हैं आप, अच्छी सी गप लगाते हैं आप, अच्छी सी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी सी मूवी देखते हैं, आराम से सोते हैं. और साथ साथ मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास एक चीज़ जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था वो अगर नहीं मिली तो मेरे पास है क्या क्या, किस किस्म के लोग हैं मेरे पास, किस किस्म के एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं मेरे पास, और किस किस्म की इज्जत प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी है मेरे पास. एक चीज़ नहीं भी हुई तो क्या होगा, दोबारा कोशिश कर लेंगे, फिर कभी हो जाएगा, इसके साथ नहीं हुआ तो किसी और के साथ हो जाएगा. लेकिन इस वक्त को मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, और वो वाली बात, पंजाबी तुसी आदमी हो, पंजाबी वितन दसना, अपना रंजा राजी रखना बहुत ज़रूरी है. रंजा जब नाराज़ हो जाता है ना तो हीर जो है ना उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो बिल्कुल इसी तरह जो आपका रंजा है ना वो आपके अंदर रहता है. तो जब वो थक जाता है, फंस जाता है, इरिटेट हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, दुखी हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो उस रंजे को राज़ी रखने के लिए, उस रंजे को, सोने को जो चीज़ पसंद है उस पे ध्यान दें, जोर मत लगाएं उसके ऊपर ना. और ये बाहर के लोगों के लिए भी है, जब भी आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, किसी मकसद से मोहब्बत करते हैं, کسی آرگنائزیشن کے کسی مقصد کے ساتھ آپ اٹیچڈ ہیں, کوئی زندگی میں ایکسلنس اچیو کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی بھی ایسا انسان ہے یا انوائرمنٹ ہے کچھ بھی, اس پہ زور لگانے کی کوشش مت کریں. ہم زور جب جم میں بھی لگاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ توڑ بیٹھتے ہیں, رشتوں میں بھی جب ہم بہت زور لگاتے ہیں, بے شک آپ صحیح ہوں, بے شک جو آپ چاہ رہے ہیں وہ صحیح ہے آپ کے حساب سے, لیکن فری ول رب نے ایک ایسی چیز پیدا کر لی ہر انسان کی زندگی میں, اس کو دے دی اس نے, جس سے اس پوری دنیا کا ڈرامہ, یہ پوری دنیا کی فلم, یہ پوری دنیا کا اتار چڑھاؤ صرف ایک فری ول کے اوپر ہے. اور اگر آپ نے زندگی میں اپنی فری ول اپنی پہ آپ کام کر سکتے ہیں, دوسرے کے اوپر آپ اس کو فری ول کا حصہ بنا کے آپ ڈیسیجنز نہیں لے سکتے, کیونکہ اگر آپ رسپانسیبل ہیں اور وہ رسپانسیبل نہیں ہے یا وہ اور طرح سے کوئی پرسنالٹی ہے, تو یہ کام ہمیشہ کھٹائی میں پڑ جائے گا. ایک اور بات یاد رکھیے, ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ زہم بھی ہے, یہ کیڑا بھی ہے کہ ہم انسانوں کو ٹھیک کر لیں گے, یا کوئی انسان آپ سے محبت کرتا ہے تو دیکھیں جی وہ انسان نے آپ سے محبت کی ہے, اس نے میرے لیے یہ چھوڑا وہ چھوڑا, یا انہوں نے ہمارے لیے یہ قربانیاں دیں, تو اب میں اس انسان کو جو ڈیمیجڈ ہے, چاہے لیڈی ہے کوئی چاہے کوئی جینٹل مین ہے, تو اب انہوں نے ہمارے لیے اتنا چھوڑا ہے تو میں اپنے آپ کو, یہ ایک ایگو بوسٹ بھی ہے اور یہ کوئی نہ ایک ریکگنیشن ہوتی ہے کہ میری خاطر انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑا ہے, یاد رکھیے گا, اور اب میں ان کا ساتھ دوں گی یا ان کا میں ساتھ دوں گا, وفا کروں گا, اور اب میں کسی ڈرگی سے اس کی ڈرگ چھڑوا دوں گا, یا میں الکوہولک سے اس کا الکوہل چھڑوا دوں گا, یا میں کسی یو نو ایک ٹیمپرمنٹل آدمی سے, اور جو یو نو اس کے بہت سارے اور ہاتھ چھوٹ آدمی ہیں یا اور کوئی مسائل ہیں, اس آدمی کو ٹیم کر کے میں اس کو ٹھیک کر لوں گا یا ٹھیک کر لوں گی. یہ 100% وہ بیٹل ہے جو آپ ہاریں گے, بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ دی ادر پرسن, اٹس یو آر فائٹنگ اگینسٹ اے نیچر, اے سیریز آف ایونٹ دیٹ ہیز ہیپنڈ ان دیٹ پرسنز لائف, دا ریئیکشن آف دیٹ پرسن ٹوورڈز دی ایکشن دیٹ ہیز ہیپنڈ ٹو ہم, اس کا سوچنے کا طریقہ, اس کو چیزوں کا ڈیل کرنے کا طریقہ, اس کی ویکنیس, اور اس کا ایک جو پوری زندگی 40 سال میں یا 30 سال میں یا 26 سال میں یا 50 سال میں بنی ہے, یا کوئی ایسا دوست آپ کو مل گیا جس کو لگتا ہے آپ اس کو فکس کر دیں گے. یو کین ناٹ فکس ہیومن بینگس انلیس دے وانٹ ٹو فکس دیم سیلوز, اینڈ وین دے آر ڈوئنگ دیٹ یو کین جسٹ بی اے سپورٹنگ رول ان دیئر لائف, ناٹ دا پیوٹل رول اور ناٹ دا لیڈ رول ان دیئر لائف. کسی بھی انسان نے اگر یہ غلطی کی, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 سال کی زندگی آپ ضائع کر سکتے ہیں, بٹ یہ کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ فری ول کا جو رب نے چیز بنائی ہے اس کے مطابق انسان آہستہ آہستہ مجموعہ ہے, وہ ایک جرنی ہے پورے کا پورا جو ابھی آپ کے پاس آیا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ آپ اس کو بچا لیں گے, یا کسی لیڈی کو لگتا ہے کہ آپ ان کو بچا لیں گے, اس کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. آپ نے خود جو کیا ہے, جیسے آپ ہیں, جیسے آپ چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, اپنے پور امپلس کنٹرول کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں, اگر آپ ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں کسی چیز سے, سبسٹنس سے لے کے انسانوں سے لے کے انوائرمنٹ تک, وہ بھی اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ بھی آپ کا اپنا طریقہ کار اور آپ کا یہ کام ہے. جتنے لوگوں کو یہ گاڈ سنڈروم, ایک انسان ہوتا ہے کہ جی میں, کلاسک فکسز ہوتے ہیں سائیکالوجی میں, جو مسئلے لے کے ان کو لگتا ہے کہ وہ فکس کر لیں گے, ایک حد سے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو جب بھی آپ کسی کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, فیملی ہو, چاہے بلڈ ریلیشن شپ ہو, چاہے سینٹیمنٹل کوئی یو نو لو کے ریلیشن شپس ہیں یا فرینڈ شپس ہیں, اس میں بھی ایک حد سے آگے وہ تو ڈوبا ہے, آپ کو بھی ڈبوئے گا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا, کیونکہ کام اپنا اپنا کرنا ہوتا ہے, اور جو بھی سپورٹنگ رول میں ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ لیڈ رول کا اپنا ایک کام ہے, جو اس کی اپنی زندگی ہے, اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ ہے, فزیکل ہیلتھ ہے, فائنینشیل ہیلتھ ہے, اپنی مقصد کی اس کی زندگی کی جو ہیلتھ ہے, یہ تمام اس کے اپنے مسائل ہیں, اور اس میں سے وقت نکال کر, ٹائم نکال کر, اپنی انرجیز ریسورسز کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں تو آپ ضرور کریں, لیکن ایک حد سے آگے نہیں کیا جا سکتا, ورنہ کام کا بندہ بھی آپ برباد کر دیں گے ایک ناکام یا ناکارا بندے کے ساتھ ساتھ. جو ڈیمیج گڈز ہوتے ہیں ان کو ایک حد تک یہ تھوک تھگڑی لگا کر ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد جو ان کی جو کریکنگ ساؤنڈ ہوتی ہے یا ان کو جو دیمک لگ جاتا ہے وہ ایک ریئلٹی ہے, اس کی جو اس کے اوپر, اس کرسی کے اوپر, اس صوفے کے اوپر, اس میز کے اوپر بھی جب آپ بیٹھتے ہیں تو کتنے دھیان سے بیٹھتے ہیں, اور ایک دن دھڑام سے وہ گر جاتی ہے وہ چیز, کیونکہ انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب تک اس اور پوٹینشیل پہ نہیں جانا ہے, ایک اور بیماری ہم لوگوں کو بہت ہے, ہم میں بھی تھی اور بھی لوگوں میں ہوتی ہے, کبھی کبھی ہم بندہ پھنس بھی جاتے ہیں اس کے اندر, کہ اس انسان میں بڑا پوٹینشیل ہے, یہ انسان کو بہت بڑا کمال کر سکتا ہے, یہ لیڈی جو ہے لکھ کر کر کے, یا اس کے اندر ایسی زبردست یعنی خاصیتیں خصوصیات ہیں کہ ایک دن یہ بن جائے گی. رشتے, फ्यूचर में नहीं बनाए जा सकते रिश्ते, किसी भी किस्म का रिश्ता प्रेजेंट में बनेगा। प्रेजेंट में आप जो ऑन टेबल लेके आ रहे हैं, जो आप हैं, उसकी बेस पे डील बनती है। एक कंपनी जब आप खरीदते हैं या उससे मर्ज करते हैं, तो इस वक्त उसकी जो नेटवर्थ है या उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से आप उसको पे करते हैं या उसको आप ब्लेंड इन करते हैं अपने साथ। उसकी 20 साल के बाद क्या वैल्यू होगी, ये चीजें उस वक्त नहीं, आप इसकी वर्थ के ऊपर आप उसको थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे सकते हैं, लेकिन ये सब इस वक्त की वर्थ के ऊपर करना है आपने। हम में से बहुत सारे लोग इंसानों में, रिश्तों में ये गलतियां करते हैं कि जी इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ये ऐसा कर सकता है या वैसा कर सकती है। बिल्कुल नहीं, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। 20% भी करेंगे तो क्लैरिटी में क्या करेंगे, 80% बेशक ना करें, लेकिन डील सिंपल और क्लियर होती है। और जैसे ही उनको वो चीज मिल जाती है, आपने देखा है जिस दिन कागज पे साइन हो जाता है उसके बाद लोगों के सोचें बदल जाती हैं, जहन बदल जाते हैं, और वो जो जिस चीज के लिए मर रहे होते हैं, जब वो चीज हाथ आ जाती है तो वो टोटली और लोग हो जाते हैं। इंटरेस्ट इंटैक्ट कैसे करना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजों को बढ़ाना कैसे, अपना रोल को डिफाइन करके उसको एक्सीलेंस पे कैसे पहुंचाना है, कैसे रुकेंगे इस बात से कि दूसरे के 80% या 70% या 30% या जो 50-50 की डील हुई थी उसमें जाकर नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। मैंने कितने लोगों के साथ बिजनेसेस किए, कितने लोगों के साथ मेरे हर किस्म के रिश्ते हैं, हर आदमी अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में टामक टोइयां मारता है, और उस बदबख्त को इतना भी नहीं पता होता कि चलता फिरता बिजनेस, फलता फूलता हुआ रिश्ता या बिजनेस या कोई भी चीज बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इनसिक्योरिटी और कॉम्प्लेक्सेस में जब आप होते हैं और कंट्रोल चाहते हैं उन चीजों का, और कंट्रोल के बारे में भी याद रखिएगा, कंट्रोल सिर्फ उस आदमी को सूट करता है जो कंट्रोल नहीं चाहता। वो अपने काम में इतना अच्छा होता है या इतनी अच्छी होती है कि आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी बन जाती है उस घर की, उस सिस्टम की या उस ऑर्गेनाइजेशन की, कि उस बंदे या बंदी को कंट्रोल दे दें, बिकॉज उस काम के साथ डेडिकेटेड है और उसमें वो रिजल्ट ले आया है। लोग आपको कहेंगे कि आप हेड बन जाएं, आप प्रेसिडेंट बन जाएं, आप इस कंपनी के फलां रोल जो है वो आप ले लें। कम्युनिटी में लोग आपसे कहेंगे कि क्यों आप क्यों नहीं ये बन जाते, आप क्यों नहीं बन जाते, आपके पीछे आते हैं। और जो लोग कहते हैं ठीक है देखेंगे समझेंगे, इसके साथ ये तमाम चीज़ें हैं, फिर ये मेरी कंडीशंस हैं, ये अगर आप पूरी करते हैं तो मैं ये काम करता हूँ, ऐसे लोगों को कंट्रोल खुद ब खुद आ जाता है। जो लोग भी कंट्रोल अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होती है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ डर होता है जिसकी वजह से वो ऐसे करते हैं, या उनको ये पता होता है कि दूसरा बंदा इस काबिल नहीं है कि इसको कंट्रोल कर पाए, लेकिन वो चाहता, या तीसरा बंदा, चार लोग भी हो सकते हैं एक ग्रुप के अंदर, या फैमिली में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो कंट्रोल चाहते हैं लेकिन वो डिजर्व नहीं करते। जो आदमी भी कंट्रोल चाहेगा ज्यादातर वो डिजर्व नहीं करता। और कौमों का भी यही अलमिया है कि ये अलमिया है कौमों का भी यही लफ्ज, भी उतने सालों में आपने यूज नहीं किए होते ना, तो कौमों का अलमिया भी यही है, आयरनी है ये। और इसी में इंसान, बहुत सारे लोग जो पावर चाहते हैं वो उस पावर के काबिल नहीं होते। तो घरों में भी यही है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही है, और ज़िंदगी में भी यही है। और जब भी आप ज़िंदगी में ऐसे लोग और ऐसे काम देखें, तो मेरा बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, आई जस्ट स्टेप आउट, इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टू मच टाइम एंड एनर्जी। जब आपको जो चीज़ नज़र आ रही है और जो चीज़ कि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं 25-30 साल करते करते, उसमें अगर आपकी सुनवाई नहीं है और जो आपकी जगह है वो नहीं बनती, तो लड़ाई झगड़े अदालतें हैं, टाइम ज़ाया, दुनिया में इतना वक्त नहीं है। उधर एक अदालत है, उसमें भी अच्छा खासा मामला खड़ा होगा वहाँ पर। ये दुनिया की छोटी मोटी मसाइल, छोटे मोटे पैसे, छोटे मोटे कागज़ों के पीछे अपनी ज़िंदगी हल्कान करने के बजाय एमिकेबल तरीके से आप चीज़ों को डील करें। जो भी लेना देना है वो दें, नहीं कुछ मिलता है तब भी जाने दें, आगे जो आप चीज़ बनाएंगे, क्योंकि आप तो आप हैं, आप एसेट हैं, आपकी सोच एसेट है, आपका काम एसेट है, आपके मिलने मिलाने वाले लोग खुद कहीं ना कहीं से चीज़ बन जाएगी जो 25-30-40 साल की ज़िंदगी आपने गुजारी है। जस्ट लेट गो ऑफ दीज थिंग्स एंड स्टार्ट अ फ्रेश। डरे मत ज़िंदगी को बार बार फ्रेश स्टार्ट करने से। मैं 3 दफ़ा स्टार्ट कर चुका हूँ, 4th दफ़ा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो कुछ मैंने सीखा जिस डेकेड में, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, कहीं नहीं जाता ये सब कुछ। जो कुछ भी आया, साथ लेकर नहीं आए थे पैसे, साथ लेकर नहीं आए थे पावर, साथ लेकर नहीं आए थे ये रिस्पेक्ट और मोहब्बत, ये सब अलोंग द वे आपको मिली है। देने वाले ने ये दिया है, वो आगे और भी देगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा ढीला छोड़ के लेट इट गो, और फिर आप देखें कैसे चीज़ें आपके पास आती हैं। जैसे ही आप चीज़ें छोड़ के पीछे बैठेंगे, आप देखें सब कुछ आपके सामने खुल जाता है। और फिर गालिब ऐसे नहीं कहते, बाजीचा या अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा शब रोज मेरे आगे, यानी कि बच्चों का प्ले ग्राउंड है ये दुनिया मेरे आगे, और रोज़ मेरे आगे ये सब तमाशा होता रहता है। जानने वाला जानता है, بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے. ٹھیک ہو گیا سر؟
4: I can't wipe the smile off my face.
3: شروع کہاں سے ہوئی تھی، ختم کہاں ہوئی؟
4: کوئی بات نہیں سر،
3: آپ کو بول کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، اس کا ایک ایسا کلپ بنانا جس سے بہت سارے اور لوگوں کی بھی آسانی ہو اور وہ بھی شیئر کر سکیں، یہ بیسکلی ہمارا مقصد ہے. اور کبھی کبھی کیونکہ آپ کی جاب آج کل ایسی ہے کہ کبھی کبھی آپ کو موقع ملتا ہے، لیکن اب ہم کو یقین ہوا کہ جب بھی آپ کو موقع ملے گا آپ خود بخود آ جائیں گے، کیونکہ آپ نے مزہ چکھ لیا ہے.
4: بالکل، اور یہ مزہ ایسا ہے سر، ابھی میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا، آپ سے صرف سننے میں نہیں نا، میرے پورے پورے I was getting goosebumps all over my body like in a good way. مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے.
3: Once you are connected with truth, when you are connected with reality, when you are connected with the source of energy and that is coming from you, from the audience and the kind of love, care and respect we have for this platform, اس کے اوپر جو بھی بات کی جائے گی لوگوں کو اس کی انٹینشن کا پتہ ہے، لوگوں کو اس کی انٹینٹ اور جو کانٹینٹ ہے اور اس کے اندر جو ہماری کنٹینٹمنٹ جو اس سے ہمیں مل سکتی ہے اور آسانی پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، وانس یو آر یو نو کائنڈ ان ٹچ ود اٹ اور اس کے ساتھ آپ کے جو ہے نا کنیکشن، یو بلڈ اے کنیکشن ود اٹ، سو انرجی کا فلو ٹرانسفر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے دل کی آواز ہے، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں، یہی آپ سننا چاہتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جو کبھی کہی نہیں گئی، کبھی سنی نہیں گئی اور کبھی بولی نہیں گئی، اور اگر یہ وقت پر ہو جاتی تو ہم اب تک ہمیں پر لگ گئے ہوتے اور ہم اڑ رہے ہوتے بجائے اس کے کہ ہم رینگ رہے تھے.
4: سر ابھی میں I'll just ask you one last question and I'll confidence and decision making, what's the correlation?
3: دوبارہ پوچھئے.
4: Confidence and decision making, ان میں کیا ریلیشن ہے؟
3: دیکھیں دو تین چیزوں کو پہلے آپ نے سمجھنا ہے. یہ ساری چیزیں ایک درخت جیسے لگا ہوتا ہے نا، اس کی ایک روٹ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک سٹیم ہوتی ہے، سٹیم کے اوپر پھر برانچز نکلتی ہیں، برانچز کے بعد پتے آتے ہیں، پھل پھول آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھول نکلتے ہیں، پھر اس سے پھل بنتا ہے، پھر وہ جھڑتا ہے. یہ پورا ایک پروسیس ہے، یہ جو ٹری آف لائف بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اسے سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے. آپ کو یہ کوسچن کانفیڈنس اور ریلیشن شپ بلڈنگ جو ہے، کانفیڈنس اور ڈسیزن میکنگ جو ہے، ڈسیزن میکنگ ایک پروسیس ہے، کانفیڈنس ایک ٹول ہے جو کہ اس کے لیے استعمال ہوگا، اور بھی بہت سارے ٹول ہیں، ایکسپیرئنس زندگی کا، کلیئرٹی آف مائنڈ ایک اور ٹول ہے، آپ کی فائنینسز ایک اور ٹول ہے، آپ کے ریسورسز ایک اور ٹول ہے، آپ کے ریلیشن شپس وتھ پیپل یہ ایک اور ٹول ہے. یہ سب چیزیں جب ایک جگہ پہ مل جاتی ہیں تو یو آر کانفیڈنٹ انف ٹو میک اے گڈ رائٹ ڈسیزن. اس کے علاوہ آپ کا بائیسڈ نہ ہونا ایک اور بہت اچھا ٹول ہے، آپ کا آبجیکٹیو ہونا ایک اور بہت اچھا ٹول ہے، آپ کا ڈو یہ اس ٹائم کے اوپر کس وقت آپ یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں، اس ڈیسیجن کے پروز اینڈ کونس کون سے ہیں، اس کے پیکج ڈیل میں آپ کتنے ریئلسٹک ہونا ایک اور ٹول ہے، کہ کتنے ریئلسٹک ہیں آپ کے اس وقت جو بھی آپ جس سچویشن میں ہیں، جس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر آپ گزر رہے ہیں، اس وقت آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے جب آپ فیصلہ لیں گے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے، اور اس میں ایک چیز اگر آپ ڈال دیں گے تو قدرت کا وہ قانون آپ نے ٹرگر کر دیا جس کا فائدہ ہو ہی ہو. یہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کی انٹینشن کیا ہے، اگر اس میں دوسرے بندے کی یا دوسری پارٹی کی بھلائی اگر آپ شامل کر لیں گے تو آپ نے قدرت کا قانون ٹرگر کر دیا، دوسرے کی بھلائی سوچ کر ایسے ڈیل کرنا کہ اس کا بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو، اور رشتے کا بھی فائدہ اور انوائرمنٹ کا بھی فائدہ ہو. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی ڈیل نہیں. تو یہ چیزوں کی کو ریلیشن بھی اس وقت آ گئے، اور ساتھ ساتھ آج اب جنہوں نے یاد کرایا تھا شناز جی نے بہت ہی اچھا ٹریک، تو یہ وہ راستہ ہے چلنے کا، آہستہ آہستہ آرام آرام سے آپ نے چلنا ہے، سٹر کریٹ نہیں کرنا ہے خام خواہ کا، طوفان چائے کی پیالی میں نہیں اٹھا کے کھڑا کر لینا، جب کہیں جانا ہے تو تیاری کے ساتھ اپنے صحیح موقع کا، صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے، پھر وہاں پر وہ چیز کرنی ہے اور وہ چیز نکالنی ہے، وہ چیز دکھانی ہے جس کا وقت آ گیا ہے، اپنے وقت پر آیا ہوا آئیڈیا سب کچھ ہے، اسی کو پیٹنٹ کر لینا وہ ایک اور بڑا کمال کام ہے. سو یہ جب ہمیں سمجھ آ جائے گا، اور یہ سب سلولی اینڈ گریجولی ہوگا، بہت ساری چیزیں ہمیں بہت جلدی زندگی میں چاہیے تھی لیکن اس کا وقت نہیں تھا، اس کو پانے کے لیے پھر انسان غلطیاں کرتا ہے، کچھ غلطیاں مسٹیکس ہوتی ہیں جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں بلنڈرز ہوتے ہیں، जो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो आपने ये ज़रूर समझना है कि ज़िंदगी में आप गलतियां ज़रूर करें, क्योंकि उससे आप सीखेंगे, समझेंगे, और उसमें आपके अंदर डेप्थ पैदा होगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड पैदा होगी, व्हाट यू वांट व्हाट यू डोंट वांट क्लियर आपको होगा। लेकिन जब आप बिना देखे जज्बात में, बिना सोचे समझे दूसरों की देखा देखी, किसी के डर से ब्लेंड इन करने के लिए, किसी की तरह बनने के लिए आपने वो डिसीजन ले लिए जो आपकी नेचर के अगेंस्ट हैं, या जो आपकी वीकनेस है वो उससे बाहर निकल के खुल के सामने आ गई, तो उसको ब्लंडर कहते हैं। और वो ब्लंडर्स जो हैं, फिर जब आप उसमें से निकलने की भी कोशिश करेंगे तो पूरी तरह निकल नहीं पाएंगे, और उसका जो नुकसान हुआ है वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। तो ये ज़रूर आपने सोच लेना है कि मिस्टेक्स करें, क्योंकि पुरानी गलतियाँ क्यों करनी है, और गलतियाँ नहीं करें क्योंकि गलतियों से आदमी सीखता है। तो बार बार एक गलती जो सीख रहा है उसका मतलब यू नो डूइंग सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड इनसैनिटी। ये जुमला जिस दिन मैंने पहली दफ़ा सुना था वो मेरी ज़िंदगी बदल गई थी इस जुमले को सुन के, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को सामने रख के कसौटी में ये चेक किया था कि यार ये कितना मैंने किया है, और फिर सब बदल गया था। और मेहरबान थे वो भाईजान जिनके मुँह से ये अल्फाज निकले और लोगों तक पहुँचे, आइंस्टाइन थे, तमाम मेहरबान लोग जिन्होंने पहले आवर में बहुत घमसान का रन पड़ा जी, बहुत मज़ेदार किस्म के क्वेश्चंस और पॉइंट्स ऑफ व्यू आए। उम्मीद करते हैं इससे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों के गोश गुजार हुई होंगी। बीच में बहुत सारा अपनी अम्मा का हमारा फेवरेट ट्रैक आपने सुना, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो ये ना वो उस ज़माने में ना नाक से बहुत सिंगिंग मतलब बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस के साथ अगर आप सिंगिंग कर सकते हैं ना, तो कुछ लोग उनके नाक जो नाक चढ़ा के बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देती थी, ये तरन्नुम नाज होती थी, फरीदा खानम थी, उसके अलावा द लेजेंडरी नाहिद अख्तर। लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो आप चेक कीजिएगा इस गाने को, वो नाक के साथ कितना अच्छा एक्सप्रेशन देती हैं, क्यूट। कोई है जी हमारे साथ रेडियो आज़ाद ही रोने, हेलो
5: अस्सलाम वालेकुम आजाद नाना।
3: वालेकुम अस्सलाम, आवाज थोड़ी बीमार है, कैसी हैं आप?
5: मैं ठीक हूँ आजाद नाना, पहले से बहुत बेहतर।
3: अब आप बिल्कुल फिर घोड़े की तरह फिट हो जाएंगी,
5: बिल्कुल
3: कभी इधर भागेंगी कभी उधर भागेंगी, कहीं जहाँ चारा नजर आएगा वहाँ खड़ी हो जाएंगी।
5: आपने वो बना भैंस बना,
3: पानी नहीं नहीं घोड़ा कहा है हमने, लंबी रेस का घोड़ा, जो पानी जहाँ मिल जाता है अच्छा फ्रेश पानी, ग्रीन पैस्चर्स में दौड़ता हुआ लंबे बालों के साथ, यू नो हमने सारा फील भी कर लिया उसको। अभी एक फिल्म आई है उसमें घोड़े का नाम भी आजाद है, वो क्या काला उन्होंने कमाल घोड़ा अरबी कहीं से उठाया है, क्या उसकी उठान है और क्या उसकी बांकपन है उसकी,
5: मजेदार। ये कौन सी फिल्म है आजाद लाला?
3: ये फिल्म है, नाम है उसका आजाद।
5: अच्छा ठीक है, नहीं आजाद लाला अब तो काफी बेहतर हूँ मैं, और इतना अच्छा लग रहा है आजाद लाला, बल्कि मैं सोच रही थी मैंने कहा हम कैसे छोटी छोटी चीजों को जैसे इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना बटन बंद करते भी मुश्किल हो रही थी, चम्मच उठाना भी, मुंह खोलना, और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं। और ये अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं, लाइक जब हम अपनी दी स्मॉल थिंग्स वी जस्ट इग्नोर।
3: अगर आप सीखना चाहें ना और अपनी औकात जानना चाहें, पिछले दिनों वैसे ही मेरा उंगली ऊपर से ना स्किन कट गई, तो एक तो वो खून बहुत आ रहा था, पता नहीं कैसे हुआ, तो किसी चीज़ के साथ लग गया तो एकदम, तो वो पे जाए ही ना, मैं जितना उसको रोकूं वो करे, फिर खैर मैंने उसको बांध दिया। फिर उसके बाद बर्तन धोते हुए, हाथ मुंह धोते हुए, वुजू करते हुए, स्विमिंग करते, हर वक्त उसी का ख्याल रहता था। और वो और उसकी जलन भी जानी, क्योंकि वो स्किन का कोई ऐसा पार्ट था, वो पानी गर्म लगे तो जलता था, ठंडा लगाए तो जलता था, तो दो तीन दिन तक ना पता चला कि इंसान, ये कहते हैं जी कुछ दिनों की आग होगी, अरे भाई आग को छोड़ो, थोड़ी सी स्किन उतरी है, हवा पास से गुजरती है तो इतनी तकलीफ हो रही थी। तो यार लोग, हम लोग ना देखते सोचते समझते नहीं है बात करने से पहले, और दुनिया के जहन्नुम में रोज जल रहे होते हैं हम, और उसी की तपिश में लोगों ने क्या किया, अभी तिक्के अपने बना लिए हैं, थोड़े थोड़े तिक्के बना के खाते रहते हैं, आग लगी हुई है, अंगार पखे हुए हैं, हवा शवा लगा देंगे, जो ज्यादा डेढ़ सियाने उन्होंने साथ पंखा लगा दिया कि वो परमानेंट हवा लग जाए, हाथ के भी तकलीफ नहीं करना चाहते ना, ताकि वो ट्रिगर थम नहीं हो तो जो सारी चीजें टेंडनाइट सारी चीजें भी ठीक हो सकती हैं, साथ बंदा एक्सरसाइज ही कर ले हाथ की, नहीं जी उन्होंने कहा नहीं हम पंखा लगा लेंगे।
5: लेकिन वाकई हमें अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए हर इन चीजों पे, लाइक वी शुड बी सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग।
3: शो ने हेल्प की साथ जो करनी चाहिए उसको
5: बहुत ज्यादा आजाद अल्लाह, मैंने आपकी जैसे पिछले शोज आपके जो अभी गुजरे हैं उन उनको सुनना शुरू किया,
3: वो कैसे थे, बहुत अच्छे शो थे पिछले दो, बहुत ही अच्छे थे।
5: हाँ जी बिल्कुल, उनमें से एक मैंने सुना है, अभी दूसरा रहता है मेरा। तो
3: वो सुना आपने जिसमें कहा है, जब तक आप पूछेंगे नहीं मैं बताऊंगा नहीं, और आपने कहा जो कुछ पूछेंगे मैं वो सब बताऊंगा, और उसका रास्ता भी बताऊंगा, प्लान भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पूछेंगे आप, बजाय इसके कि सिर्फ हमें कहते रहें कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपने ये पा लिया, वो पा लिया, कैसे पाया, क्यों पाया, क्या हुआ, वो पूछें, रास्ता कौन सा है, जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछें, तो उसका जवाब आएगा।
1: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी ली तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

और उन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ जानना चाहा। इस्तौकद नारा क्या है? उनकी वो तलब कि उन्होंने रोशनी चाही, जानना चाहा। अब क्या हुआ? जब रोशनी आ गई, फलम्मा अदाअत मा हौलहु, और अच्छी बुरी सब चीज़ें नज़र आने लगीं, तो उन्हें क्या नज़र आया कि इसमें तो मुश्किलात भी हैं, इसमें तो बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। इस्लाम लाना सिर्फ फ़ायदे हासिल करना नहीं, इसमें तो कुछ देना ही पड़ेगा। बाज़ों का ऐसा होता ना कि एक्साइटमेंट में कुछ लोग कोई अच्छा काम देखते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कोई सोशल वर्क का काम कर रहे हैं या कोई और बहुत नेकी का काम कर रहा है, तो क्या होता है, देखा देखी जोश जज्बे में चल पड़ते हैं साथ। फिर जब आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो इसमें तो टाइम लगाना पड़ता है और इसमें तो मेहनत लगती है और इसमें तो कुर्बानी देनी पड़ती है, तो फिर क्या होता है, वो ढीले पड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। अब यही कुछ उन्होंने दीन के साथ किया, तो दीन का मामला कोई मजाक नहीं है। उसका नतीजा क्या हुआ? रहब अल्लाह बिनूरहिम, अल्लाह उनके दिल की रोशनी ले गया, क्योंकि उन्होंने दीन के साथ संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, नीयत खराब थी। व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन, और उनको अंधेरों में अल्लाह ने छोड़ दिया। ला युबसिरून, अब वो नहीं देखते। सुम्मुन बुक्मुन उम्यून फहुम ला यरजिऊन, दूसरी मिसाल से क्या बात पता चलती है? गौर से देखिए, इस आयत से या इस मिसाल से ये पता चल रहा है कि मुनाफिकीन दीन के मामले में सिलेक्टिव होते हैं, सिर्फ उन अहकामात को लेना पसंद करते हैं जो आसानी से हो सके, और जहां मुश्किल पड़े वहां वो पीछे हट जाते, मुश्किल में आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि ये कहा गया ना कि कुल्लमा अदा अलहुम मशौफी व इदा अजलमा अलैहिम कामू, जब रोशनी हुई चल पड़े, यानी आसानी हुई तो दीन का नाम ले लिया, और जब मुश्किल हुई वहीं खड़े हो गए। दीन पर अमल करना उनको मौत लगता है, क्योंकि जब वो दीन की कोई मुश्किल बात सुनते हैं या जानते हैं तो अपने कानों में इस तरह उंगलियां डाल लेते हैं जैसे कोई मौत के डर से अपने कानों में बिजली के कड़क की वजह से उंगलियां डाल ले। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर जो दूसरी आयत है, इससे ये दो बहुत अहम बातें पता चलती हैं कि जब आसमान से वही की बारिश हुई जिसमें खुशखबरियाँ भी थीं और उसके साथ साथ मुश्किल अहकामात भी थे, तो ये उससे डर गए। तो इससे पता चलता है कि मुनाफिकीन दीन के मुश्किल अहकामात पर अमल से बचने के लिए कुरान को सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि कान में उंगलियां किससे दी? यहाँ ऐसा नहीं कि बाकी फिजिकली बारिश हो रही थी और वो उसमें गरज चमक थी तो वो डर रहे थे उस बारिश से और फिर कानों में उंगलियाँ दे रहे थे कि हम मर ना जाएं। ये तो मिसाल दी गई है कि जैसे एक शख्स बारिश में बिजली की कड़क चमक से डर के उंगलियां देता, मुनाफिकीन कुरान की बारिश से इसी तरह डर गए और कुरान में मुश्किल अहकामात को सुनना नहीं चाहा और अपने कान बंद कर लिए। तो हमारे लिए क्या सबक है इसमें? हमें कुरान पाक के मामले में डरना नहीं चाहिए, जैसी भी आयात हो, अहकामात हो, उनको खुले दिल से कबूल करना चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जो भी अल्लाह का हुक्म है क्या कहना चाहिए? समयना व अताना, हमने सुना और हम मान गए। कुरान पाक को इसलिए पढ़ना छोड़ना नहीं चाहिए कि अगर हम पढ़ेंगे तो फिर अमल करना पड़ेगा, यानी डर के मारे कुरान से भागना नहीं चाहिए, बल्कि कुरान मजीद के अहकामात को खुशी से कबूल करना चाहिए, क्योंकि उनके नज़दीक सारी अहमियत दुनिया की थी। मुनाफिकीन के नज़दीक मुनाफिकत दुनिया की मोहब्बत से जन्म लेती है। जब इंसान को अपनी दुनिया प्यारी होती है और वो दीन के लिए कोई कुर्बानी नहीं करना चाहता, तो फिर वो ऐसा रवैया अख्तियार करता है। दीन के अहकामात को आप क्वेश्चन कर सकते हैं समझने के लिए, जानने के लिए, गौर व फिक्र के लिए, लेकिन इनकार नहीं करें। और इस मामले में आप देखें कि बाज़ औक़ात ला इल्म लोग बहुत से पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। मुझे याद आ रहा है एक खातून का वाक़या कि जो कुरान को अरबी में नहीं पढ़ सकती थी और ना ही उसका तर्जुमा मालूम था, कुछ भी नहीं उनको आता था, लेकिन मोहब्बत इतनी थी अल्लाह की किताब से, बस इतना पता था कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने भेजा है और अल्लाह सबसे बड़ा है, सिंपल सी बात। तो उसका क्या तरीका था? वो उंगली रख के कहती, या रब जो आखे ही सच आखे ही, जो आखे ही सच आखे ही। मतलब क्या? जो कहा सच कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है,

0: लेकिन तू जो भी कहता है तू सच ही कहता है। क्यों ऐसा एतमाद था उसको? और हम चार हर्फ पढ़ जाते हैं तो हम हर चीज़ को क्वेश्चन करने लगते हैं कि अल्लाह ने ये क्यों कहा और वो क्यों कहा। हम कभी ये तो नहीं पूछते अल्लाह तूने आसमान क्यों बनाया और तूने ज़मीन क्यों बनाया और तूने खाना हमें क्यों दिया और हमारी आंखें क्यों बना दी, कभी पूछते हैं? हम सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में पूछते हैं जिन पर हमारा नफ्स राज़ी नहीं होता, हम करना नहीं चाहते। ठीक है, इंशाल्लाह मज़ीद जब इबादत का माना पढ़ेंगे तो ये बात और खुल के सामने आएगी। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद मालूमाती तालीम और तरबियत पर मबनी सीरीज और लेक्चर्स के लिए समात फरमाते रहिए इंस्पायर FM।
2: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर FM।
1: इंस्पायर FM।
3: इंस्पायर 105.1 FM।
4: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. That he who loves for the sake of Allah, hates for the sake of Allah, gives for the sake of Allah and denies for the sake of Allah, he has completed his Iman.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457-7709.

सूरज की किरणों से चमके सारा जहां, इंस्पायर एफएम की लहरों से महके सारा समा। रहे आपके साथ यहां और वहां,